0: उत्कृष्ट एवं विस्तारित।
1: डांस मोड काउंटडाउन काउंटडाउन काउंटडाउन 5 4 3 2 1

आज कॉलेज का आखिरी दिन है और आने वाली जिंदगी के लिए सभी ने कुछ सोच रखा है, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है। नो रियली आई मीन इट। और आज मुझे बार बार एक ही ख्याल आ रहा है,

0: पापा, आप दूसरे पापा जैसे क्यों नहीं हो?
1: मैं दूसरे पापा से अच्छा पापा हूँ। मैं बहुत काम करता हूँ। बाकी पापा संडे को आराम करते हैं, मैं संडे को भी काम करता हूँ, इसीलिए मैं अच्छा पापा हूँ। ऐसा ऋतु दीदी कहती है।

0: सबल उत्कृष्ट एवं विस्तारित
1: वेलकम टू श्रेष्ठ टेलरिंग
2: रेडी मेड या शूटिंग शर्टेज मलाई ट्रैक सूट चाहियो
3: मलाई फ्रॉक
4: मलाई पनि सूट
5: वाओ
6: अनि मलाई

0: मिला कर
1: रेडियो सिटी 98.8
2: वेलकम टू सिस्टर टेलरिंग
3: रेडी मीडिया शूटिंग शटर्स मलाई ट्रैक शूट चाहियो
4: मलाई फ्रॉक
5: मलाई पनि सूट
6: वाओ
7: अनि मलाई

आज राति 9 बजे सुन्न नभुल्नुहोला मात्र रेडियो सिटी एफएम 98.8 मेगाहर्जमा।